की तिल वड्याई, आग थके कीमत नहीं पाई। जी सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए। ना ओह मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चूकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड्याप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरणाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ। हर जन के वड़ भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सहै, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुरु सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवह है उद्दम। जा आहर हर जियो परिया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए। ताका रिजक आगै कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संबाही ठाकुर, काहे मन भउ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाशै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मैं

तेरा अंत न पारा वरिया, राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुझी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समान। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवह तुझी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह है हर त्यावह तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बलजासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुझी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरे अनेक करे हर पूजा जी।

सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी और रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुस्तन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। घट घट

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जा बुध करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आ करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देहे तर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जा को भेव न पावत भेदा। ता कौ कर पाहने अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव।

कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आजुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि न हर हो, ताके ताप तनिक मैं हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वस कह न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो काहा, दारिद दुष्ट दोख ते राहा। खड़ग के तुम

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किलबिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुनै गुंग जो जाहे, सुरसना पावई, सुनै मूर्चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट, न तिन नर के रहै, हो जो याकी एक बार चौ पई को कहै। चौपई संबत सत्रह है, सहस पणिजय, अर्ध सहस फुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र

गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरा किते नकाम मिल साध संगत पज केवल नाम

कोई नाउ न जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौनी त्यावै ताए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौह साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत असीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਥਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਟੇਕ ਪਤੇ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ।

जो किछ है सो तेरा। कदों झोलियां भरदियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जावे। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने। अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी।

बड़ा गोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरले करदा है, सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है, मेरी भी झोली भर। सतसंगियों

दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कढ देता है। तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोल दी है। एडियां एडियां उच्चियां कोठियां ते बड़ियां बड़ियां कारां खलोतियां ने, ते ए सेठ गेटां दे बाहर बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडियां मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए। बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है। समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़ियां भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडियां मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है। आ जदों अपनी मां नू बच्चे माड़े बोल बोल देने ते मेरे तो सुनिया नहीं जाता। किड़ा गुनाह कीता है, किड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे हुए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईया सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी। शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा, उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाएंगी, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगियां। तू गुरु नानक नू भुला दिता। बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड्डे गेड़े मारदा सी। हंजू केरे, बाबा जी मैनू बख्श देवो। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे क्यों ना खुशियां आ जान। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नौ नू भी बुलाया। बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दित्ती। आखण लगे बच्चिओ, मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने। जिहड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं बाप दी सेवा करिया कर। बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। आ सतसंगियो, परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बे, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारिया रहमतां उसदियां दित्तियां होईयां ने, ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी, ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां सब तों पहलां तकदे हां बई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तों छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा ओ प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है। कदों खुशियां आउणियां ने
जदों सचमुच ही अंदरों आखेंगा सतगुरु मेरा मुझमें कि

तेरे घर दे अग्यों गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। एवें उपरों उपरों आखी जांदा है वे सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिन्हें तेनूं सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तूं रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बे, दिलों आख मनों आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच

चरण जाचक प्रतिपालन आत्म रत संग्रहण कहण अमृत कल टालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत।

0: कल उचरे जस जंपो लहने रसन।
1: वाहिगुरु जी नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोहे रंग रतो नाम सियो कल नाम सुर नरे बोहे नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसिए गुरु के अड़सठ मजन होए नाम पारस जिन पायो सत प्रगट्यो।

0: अमिये दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नव निद्रे आओ जन्म हम कालख तोवे सो कोटल गुर सेविए एन सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए सो कोटल गुर सेविए एन सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए।
1: गुरु नानक निकट बसै बनवारी तिन लैना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास पले को दिया तिन श्री रामदास सोडी तीर्थ प्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद जो जुग गुर सेवा कर फल लयं बंदै जो चरण सिण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं।

तीर्थ नावा जी तिस भावा विण पाणे के नाए करी मत विच रतन जवाहर माणिक दे कुवर की सिख सुनी जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए चंगा नाउ रखाए कै जस।

0: नमो चंद्र चंद्र नमो पान पाने
1: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो बांध बांधे
0: अनंगीय नामे समस्ति स्वरूपे
1: परमंगी परमाते समस्ति प्रभुते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राजर्जेश्वर परम रूपे
0: नमो जो जोगेश्वर परम सिद्धे
1: नमो राजर्जेश्वर परम वृद्धे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमी अपोगी अपुक्ते
1: नमो योग जगेश्वर।

0: मन मने
1: नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने
0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अरूपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता
1: अर्धं अन्नं हर्ता
0: परं परं परमेश्वरं प्रोच्छ पालन

0: ते नरकं प्रनाश है पृथुल प्रवास है
1: निरुकत प्रभा है सदैवं सदा
0: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: निरुकत सदा है विभुक्त प्रभा है
0: अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त

0: सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है,
1: मंडे सकल कंड
0: परते पर है, करुणा कर है,
1: जपा जपा तपा तप है,
0: अमृता
1: मृत्यु मृत करना
0: कृत्या
1: सुरंग है, परमेश्वर है,
0: अमृता
1: मृत मृत
0: है,
1: कर्णालय है,
0: निपनायक है, सर पायक है,
1: भंजन है,
0: अरगंजन है, जपन है,

0: अगंजुलानामे समस्त निवासे
1: बबुते समस्त स्वरूपे
0: कर्मन प्रणासी सुधर्मन बबुते
1: सचदानित सतरंग प्रणासी
0: करीबल को निंदा समस्त निवासी
1: जाय बबुते के जाय गनीमे
0: हरियम करियम करीमुल रहीमे
1: चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रपुक्ते
0: शंभम शुभम सर्वदा।

0: सदगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तव प्रसाद सोइए सब शुद्ध समूह सिदान के देख प्रयोग कर जो जति के
1: सुर सुरादन शुद्ध सुदायक संत समूह अनेक पति के
0: सारे ही देश को देख रहे हो मत को नदी के प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सरंग सुवारे
1: और तुरंग पुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे
0: हरी बुजान के भूप पलिपित न्यास न जात बिचारे
1: को नागे पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशा।

0: के पेखे।
1: कौन हार जति जत तार सब सब चार हजार क देखे।
0: श्री भगवान बजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखे।
1: शुद्ध से बात दुरंत दुभा सुशासना सुशासना दुर्जा।

0: तोरत देश मलिंद मोहासन माते के जान के मान मलैया
1: गाड़ी गड़ान को तोड़ नाज वतन ही चक चार लवैया
0: साई श्री सबको से नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया
1: दानो देव निंद निसाचर भूत भूक भगवान जपेंगे
0: जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
1: तुन पर तापन बाढ़ जाए तो तुन पापन के वो बुंजक पेंगे
0: सात समूह पर सन फिरे जग सतर सबे अब लोग जपेंगे
1: मानो इंद्र गजेंद्र नराता जून त्रिलोक को राज करेंगे
0: कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे
1: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव पतंत फसे जम फास।

0: माता कंस करा पूर्ण सब राता
1: दिल भी सरल दे को हरता दुष्ट दुखियन को छ करता
0: श्री शिव जब दियाला पूर्ण ग्रह कंत काला
1: मन बाचत फल पावे सोई दुख न तसे पे आपत कोई अड़ल
0: जो यास रसना पावे स्नेह मोच लचित

0: सो अमृत गुर ते पाया,
1: पाए अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया।
0: जी जन सब तुद पाए क्वेक प्रसन्न आया,
1: लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया।
0: कहे नानक जिसनु आप तुठा ते अमृत गुर ते पाया,
1: भक्ता की चाल निराली चाला निराली पता के बिलकम मार्ग चलना।
0: लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना,
1: खन्यो दिखी वालो निकी ए तुम्हारग जाना।
0: प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी,
1: कहे नानक चाल भक्ता जुगो जुग निराली।
0: जीव तू चलाए तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे।
1: जीव तू चलाए है तिव चले जिना मार्ग पाव है,
0: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ध्यावे।
1: जिसनु कथा सुनाई अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
0: कहे नानक सच्चे साहेब जीव भावे तिवे चलावे,
1: सुहेला सब सुहावा सबो सुहावा सब सुहेला सतगुरु सुनाया।
0: मन वसिया जिन दूरो लिखिया आया,
1: एक फिरे कनेरे करे गला गली किने ना पाया।
0: कहे नानक सबत सुहेला सतगुरु सुनाया।

0: प्यास न जाए,
1: प्यास न जाए होरत किते जिथर हर रस पल्ले न पाए,
0: पल्ले पिए हर रस बोन तिसना लागे
1: ए वरस कर्मी पाई है सब।

0: गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंद सहोदरा
1: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत्र रोदरा
0: गुरुदेव सांसद बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा
1: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन परंपरा
0: गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव

0: प्रभ सदा सहाय धन हमारा मीत रहाओ।
1: मन बिलास पहे साहिब के आचार्य देख विडाई।
0: हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई।
1: मन बिलास पहे साहिब के

आप जर सर्व कला पर पूर दिसे जत कता नानक दासन दास्त दिया गे बिनवता सर्व कला।

चक्र चेहन अरबरन जात अरपात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुपौ प्रकाश अमितोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणि जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर

कोई नाउ न जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाउ सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई निस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन त्यावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਦ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

0: खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भुले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ